0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओबेरुमो अपो कोई चुनवा विन्ये विन्ये

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो